0: लाना ये बनाना हुआ उनसे कल कमाना कहता मशीना मारा बनाना हुआ उनसे कल कमाना का काल तुनना मारा बनाना हुआ उनसे कल कमाना का ली तुना मारा अनुमाना हुआ उनसे कल कमाना का नेल सुनना मारा बनाना हुआ तब कल का नाम क्या कहता है नाले बिहार में जाएगा आए कोशिश कर रहा
1: है मैं कोशिश कर रहा हूँ चाहे

0: Buondì,
1: हेलो,
0: या
1: बोल दिया क्या हाल ही? ठीक
0: अपन वो नौको थमला रही कमासी हो ऐ
1: हमारे क्या आई हो?
0: ऐसा हमारा कर रहा है मुला मुन्ना
1: इतनी लगा गिनी है ना अर्किलोक संतों न्यू गुमेर उम्री असिन्नो
0: अरे किनो अक्सी उमरिया सवाबी वाबी शावाले अमेरिका दुआ वो
1: उम्री असिन्नो अमेरिका तो आवा तू
0: उनका वंशा वमेट लोगा न्यू उमरिया सीव
1: Baixava que empela que no le tocó a cabale. Que te que mandan dije, o más hacia la es para que venga no tocó la empaga.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Estalamo bana bana bahani ba.
1: Salamu que nada ha primero al locutor a revan patrón de voz.
0: Me kya shkurela?
1: Y caro que amarca Elena Bernardino. A mi manaca Dioslu. Arginoxi, Vanilta Arginoxi, Geltu Arginoxi, Nikeyes Arginoxi, Carole que ama a Asha Vicente, Mujumaca Domingo Antonio, Carole que tanto Mujumaca Ronia Zavalle Constancio Antonio, Lea un toco a su jurela.
0: Cochapela.